0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39। हौस् त, कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
1: आछी नेना दी कुदू निछ्या आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माई फेथ जुगु विश्वास के चमक हया बिउ। सफल जुई द थत हम अनुशासित जु जयमसी जोजलपाजी अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ यो जीवनिया छेन श्रृंखला भाग 24 के छिसकसित न लसकुस गुलिस न अनुशासन या त बाम लागु खगो ताकि इम्स ठुकी या त चिचेगो कुत याई तदङ्गु सफलता क्या त अनुशासनमा धका इम्स साहेब वो साइके मफो अनुशासनहीन मनुदेश परिस्थिति थ त लादे यागु प्रभाव या त प्रतिरोध याई अले थगु जीवने लगभग गब्ले न नियन्त्रण दैमखु मेफिन्स छु या धका धाल धासा इम्स मत्तिक प्रतिक्रिया बियाचुनी छ थथम अनुशासन मयासा संसार छङ्गु नीति याई अनुशासित मनुतेस थगु हे मूल्य मान्यता नालाकाई अले इमगु उगु मूल्य मान्यता आधारित ज्याख व प्रतिक्रिया ले छिगु जीवनिया त नियन्त्रणे टेबले अनुशासन देके मागु तस्क महत्वपूर्ण जुई विशेष याना छिगु भविष्य या नीति यो पि नियलमेपि अनुशासन ताठेगु अर्थ सुख भविष्य थ त यक्कु त दङ्गु उपलब्धि पाखे निर्देशित याय त तत्काल सन्तुष्टि या त लिपा लागेगु क्षमता ख ठुकी अप्प दीर्घकालीन फाइदा क्या त छित मागु ख या त अल्पकालीन रूपमा स्थगित यायगु न समावेश दु नापाङ्गु कोरन्थी गुगु अध्यायु निगु निपेङ्गु पटके ढाटगुडु भ्या वनेगु कासे फुक्क मनु त भ्या वने तर नापाङ्गु शिर्पा धासा छमसित जक्क दै धका छमिसन शिउरा उखी शिर्पा क्याएर भ्या वनेगु कुत यानासो छक छि छु प्राप्त याइगु धका निर्णय या ढुङ्गा उगु लक्ष्य थगु यक्कु यी व कुत लगानी याना दिस नापाङ्गुको रन्थी गुगु अध्यायु नि न्याकु पत्के धाटगुडु न्याकु कासा वती काइपी मुनुतेस नापा लाकन नसा जुया वनिगु शिर्पा क्याय त निथियन झ कुतयाना सुनि अथे हे झिसन ना सुया वनिगु शिर्पा क्याय त कुत यायमा परमेश्वर व ख्रिस्ट येशु लिसे स्वापु मधुनी मुनुतेस न सांसारिक लक्ष्य पुगुङ्के त अनुशासन छेली अनुशासन या नीति छगु निश्चित शिर्पा या नीति ध्यान बिमा अले ठुकिया क्या त छ यक्कु कुत यामा नापाङ्गु कोरन्थी गुगु अध्यायु नि खुगु पत्के धाटकु दु अज्यागुली निशाना ठेङ्गे त भ्यामुने जी फे मुक्का नकिछे जक्क मैना छु लक्ष्य प्राप्त याइगु धका निर्धारण याइगु दुङ्का अनुशासन लागु याइगु यी वोगुदु उखियाना छिगु लक्ष्य थेङ्की फै नापाङ्गु कोरन्थी गुगु अध्यायु नि नेगु पत्के धा त गुदु जी थगु मया त दाया वया त तया सुना थथे मयासा मेपिन त जक भिङ्गु ख न्यङ्का जी थहे शिर्पा क्या बम रिमखु येशु ख्रिस्ट लिहा वैबले परमेश्वर वया त अनन्त शिर्पा व्यादी धका सिका प्रेरित पावल थगु आत्मिकी जीवन अनुशासन लागु याना दिल व थगु व्यक्तिगत जीवन या त नीति येशु व्यादीगु बोलावट पुगे त थ त अनुशासित या त अथिए खना उखिया नीति त धङ्गु त्याग याएमा झिसन अथि हे याएगु बुद्धिमानी जुई कोल हर्ट नामे चम छम ल्यामदु गुम अमेरिका जन्मजुगु ख वेकल 1500 मिटर या प्रतिस्पर्धी ख 2024 या ओलम्पिक कासाया जुगु ज्याजोले वती काइगु आजु तगु ख विश्व चपी कासामी दुगु ध्या ठुगु कायसा निति वया त लेगु ख कोल थगु कासा त्याकी धका आशा मयागु ख समाचार भिडियो वो खेलकुद च्याम्पियनसिप उगु कासे मेपी निसे कायसा त्याकेगु सम्भावना अप्प दुगु धका दु कासा मेपी अन्तिमे ल्याबे ठेङ्के त व्यावना चङ्गु इले कोल हर्क मेपी निम कासा मेपी त पार्याना नापा सिदेगु लाइने पार यागु ख व तधङ्गु अनुशासने नाप नाप मिथिया थाकुग परीक्षण वया त सफलताय शिखरे यङ्कल ओलम्पिक कासा स्वर्ण पदक त्याकुगु ख यो पि न्युमेपी छि जीवने गन हुने चेना छि छिगु प्राप्त यागु आशा याना दिया यदि छि मेहनत अनुशासन या माध्यम थ त मागु खया नीति राना दि मखुसा अले थ त मव धका गुनासो याए मते छिगु जीवनिया नीति परमेश्वर बिया दिगु अजु चाहे पुगु लक्ष्य पुङके त थ थम अनुशासित जुगु ल्या दिस थौया वचन नेना दिगुनी छि त परमेश्वर सुभाविमा जय मसी मेपी छिम्स नकतिनी हे जक बाइबलिया प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादिगो हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर दु 9868553349 9868553349 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम मधुर संगीत
2: साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु गुड न्यूज एफएम 105.1 मेगाहर्जको रेडियो तरंग पोखराबाट 105.6 मेगाहर्जमा हामी छौं कार्यक्रम मधुर संगीतको साथमा आज बिहिबार हो हामी मधुर संगीतमा निकै मिठा मिठा भजनहरू तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्ने गर्छौं र आज पनि त्यस्तै मिठा मिठा भजनहरू हामीसँग रहेका छन् र प्राविधिक मित्र विजयजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको शुरूआतमा रोहित थापाले गाउनु भएको भजन राख्न चाहन्छु

प्रथम अनुशासित जु जयमसी जोजलपाजी अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्कमा फेथियो जीवनिया छेन श्रृंखला भाग चौबिस के छिसकसित न लसकुस गुलिस न अनुशासन या त बामलागु खगो ताकि इम्स ठुकी या त छिचेगु कुत याई तदङ्गु सफलता क्या त अनुशासनमा धका इम्स सायद वो साइके मफु अनुशासनहीन मनुटिस परिस्थिति थ त लादे यागु प्रभाव या त प्रतिरोध याई अले थगु जीवने लगभग गब्ले न नियन्त्रण दैमखु मेपिन्स छु या धका धाल धासा इम्स मत्तिक प्रतिक्रिया बियाछु नि छ थथम अनुशासन मयासा संसान छङ्गु नीति याई अनुशासित मनुदेश थगु हे मूल्य मान्यता नालाकाई अले इमगु उगु मूल्य मान्यता आधारित ज्याख वो प्रतिक्रिया ले छिगु जीवनिया त नियन्त्रण टेबले अनुशासन देके मागु तस्क महत्वपूर्ण जी विशेष याना छिगु भविष्य या नीति यो पि नियलमेपि अनुशासन ताठेगु अर्थ सुख भविष्य थ त यक्कु त दङ्गु उपलब्धि पाखे निर्देशित याए त तत्काल सन्तुष्टि या त लिपा लागेको क्षमता ख ठुकी अप्प दीर्घकालीन फाइदा क्याए त छित मागु ख या त अल्पकालीन रूपमा स्थगित याएगु न समावेश दु नापाङ्गु कोरन्थी गुगु अध्यायु निगु निपेङ्गु पत्के ढाटगु दु भ्या भनेगु कासे फुक्क मनु त भ्या हुने तर नापाङ्गु शिर्पा धासा छमसित जक्क दै धका छमिसिन सिउला उखी शिर्पा काएर भ्या हुने गुकु त यानासो छक छिए छु प्राप्त याइगु धका निर्णय या ढुङ्गा उगु लक्ष्य थगु यक्कु यी वकु त लगानी याना दिस नापाङ्गुको रन्थी गुगु अध्यायु नि न्याको पत्के धयाटगु दु न्यागु कासा वती काइपी मनुदेश नापा लाकन नसा जुया वुनिगु शिर्पा काय त निथियन झ कुत याना सुनि अथे हे झिसन ना सुया वुनिगु शिर्पा काय त कुत यायमा परमेश्वर व ख्रिस्ट येशु लिसे स्वापु मधुनी मनुदेश न सांसारिक लक्ष्य पुगुङ्के त अनुशासन छेली अनुशासन या नीति छगु निश्चित शिर्पा या नीति ध्यान बिमा अले थुकिया क्या त छ यक्कु कुत यामा नापाङ्गु कुरन्थी गुगु अध्यायु निखुगु पत्के धाटकु दु अज्यागुली निसाना ठेङ्गे त भ्यामुनी जी फे मुक्का नकिथे जक्क मैना छु लक्ष्य प्राप्त याइगु धका निर्धारण याइगु दुङ्का अनुशासन लागु याइगु यी वोगुदु उखिङाना छिगु लक्ष्य थेङ्की फै नापाङ्गुको रन्थी गुहु अध्यायु नि नेगु पत्के धाया त गुदु जी थगु मया त दाया वया त तया चुना थथे मयासा मेपिन त जक भिङ्गु ख नियङ्का जी थहे शिर्पा क्या बम रिमखु येशु ख्रिस्ट लिहा वैबले परमेश्वर वया त अनन्त शिर्पा व्याधि धका सिका प्रेरित पावल थगु आत्मिकी जीवन अनुशासन लागु याना दिल वो थगु व्यक्तिगत जीवन या त नीति येशु व्याधिगु बोलावट पुगे त थ त अनुशासित या त अथिए खना उखिया नीति त धङ्गु त्याग याएमा झिसन अथिहे याएगु बुद्धिमानी जुई कोल हर्ट नामे चम छम ल्यामदु गुम अमेरिका जन्मजुगु ख वेकल 1500 मिटर या प्रतिस्पर्धी ख 2024 या ओलम्पिक कासाया जुगु ज्याजो ले वती काइगु आज तगु ख विश्व स्वपी कासामी दुगु ध्या थुगु कायसा निति वया त लेगु ख कोल थगु कासा त्याकी धका आशा मयागु ख समाचार भिडियो व खेलकुद च्याम्पियनसिप उगु कासे मेपी निसे कायसा त्याकेगु सम्भावना अप्प दुगु धका दु कासा मेपी अन्तिमे ल्याबे ठेङ्के त व्यावना चङ्गु इले कोल हर्क मेपी निम कासा मेपी त पार्याना नापा सिधेगु लाइने पार यागु ख व थ त धङ्गु अनुशासने नाप नाप निथिया थाकुग